तके न कोई। संबत सदर सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख धावन त्वय प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा। भूल परी लह लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुंग के चरण तर सत दुरव तीर तरंग।

बहुत उसका विश्वास न हुआ जिसके बस दहागा रख प्रभु की आज्ञा माना माता उसे चौगन करे नानक साहिब सदा दयाल अनक पै तू माया की हित सर पर्वत जानन हित बिरख छाया सिंह रंग लावे ऊह बिन साहु मन पुछतावे जो दिशा सुचालन आर लौट रही तहां दान दार बटाऊ सिंह जलावे निहता कहु हाथ नवे की मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लई लाई मिथ्या तन तन कुटंब सुब

रंग प्रकार कर कर देखा अपनी बुढ़िया नानक है मैं रहे समाई प्रभु पावे मानुख गात पाव प्रभु पावे पाथर द्राव प्रभु पावे साह द्रख प्रभु पावे हर गुण पाए खे प्रभु पावे पत देव धरा आप कर अपन विचार दूसरे श्रेय का स्वामी खेला विकस

संत का दुख सदा उपवेत, संत का दुख कसा का नहीं वेत, संत का दुख का उडा न लाग, संत का दुख का सब त्याग, संत का दुख महा अहंकारी, संत का दुख सदा बकारी, संत का दुखी जन्म अमर, संत के दुख ना सुख ते टर, संत के दुखी का ना ही ठाउ, नान संत पावत लई मिला, संत का दुखी अद बिगते टूटा, संत का दुखी के काज ना पाए हुचा, संत के दुखी का उदयन परमाई, संत का दुखी उजड़ पाई, संत का दुखी अंतर तीर्थ था, जो सास बिना मृत किलो था, संत के दुखी की जड़ की सना है, आपन बीजा पे ही खाए, संत के दुखी का वर्ण रखना, नान संत पावत लई उभार, संत का दुखी यूं बेल लाई, ज्यो जल भी हंगन मछली तड़फड़ाई, संत का दुख भूखा नहीं राज, ज्यो पाप गीत नहीं त्राप, संत का दुखी छुटा अकेला, ज्यो गुआड़ तिर खेत मा हिंदु हेला, संत का दुखी धर्म ते रह तो, संत का दुख सद में त्याग कहत, कीर्तन अंध का तुर ही पया, नानक जो दुख पावे सुई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत का दुखी का दरगाह मरा सजाए, संत का दुखी सदा सह पाइया, संत का दुखी ना मर ना जीवाइया, संत के दुखी की पूजा न आस, संत का दुखी उठ चला न रास, संत का दुख ना दृष्टा कोई जाह पावे तासा, कोई होए पया करत ना मेटा कोई नाम जान सचा, सुई सब काट दस के हो करने आर, सदा सदा दस को नमस्कार, प्रभु की उस्तत करहु दिन रात, तसहत आव सास ग्रह सब काश वरत, तसका किया जैसा करे तह को थिया, अपना खिलाव करने आर, दूसर कौन कह विचार, जिसन कृपा कर तसापन, नाम दीप डबागी नानक जान से श्लोक, तजहु सियन सुर जनहु सिमरहु, हर हर आई का सहर मन रख, नानक दुख परम पाव जय पदी, मानुख की टीक पृथ्वी सब जान, जीवन कई का भगवान उसका दिया रह, गाय बहना तृष्ण लाग आय, मारा रखा कुआ, मानुख कह कृष्ण हाय, तुसका कंबूज सुख हो, तुसका नाम रहा कंठ पुरोई,

तकलीफ को देख कर नानक जा कर मस्त तकलीफ के कुजा भी कुशाल आही एक सिमरी कुमार आही एक उसके गुण गाओ अनंत मंतन जा भी भगवान दी कोई एक हरिया पूर्ण पूरे प्रव्या बनक विस्तार एक दे अराध प्राशत के मंत्र अंतरिक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत प्रभाय पर्या तो शरणाय नानक प्रभिंती अपनी भक्ति लाय अष्टपति जाचक जन जाच प्रवदान कर कृपा दीव हर नाम सा जनक मांगा दूर पार ब्रह्म श्रद्धा पुर सदा सदा प्रभु के गुण गायब स स प्रभु तुम त्याव जनकम से लाग प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक वोट एक वादा नानक मंगना प्रभु सार प्रभु की दृष्ट महासुख हो हर रह पव बिरला कोई जिनका ख्या सी जान त्रिवता ने पूर्ण पुरख नहीं डुला ने सबर परे प्रेम रस रंग बुझा चाहू साध संग परि सरनारायण सब त्याग अंतर प्रकाश आन दिन लिवला गुड़ पागी जप प्रभ सोई नानक नवरति सुख हो सेव के मन सा पूरी पय साधु करते निर्मल बात लई जान का प्रभ हुई हो दया सेव के मन सदा ने हार बंधन काट मुक्त जन पाया जन वरण दू प्रम गया पुण्य शरदा सा पूरी राव रह साध संग हजूर जिसका साथ लिया मिलाय नानु भक्ति नाम समाय सुख बिसराय जी का न पाना सुख बिसराय जी किया जाने सुख बिसराय जिन सब कह दिया सुख बिसराय जय जीवन जिया सुख बिसराय जी अगर मह राख गुरु प्रसाद को बेला राख सुख बिसराय जी व्यक्ति काट है जन्म जन्म का टूटा काट है गुरु पूरा ताती है बुझाया प्रभ अपना नानक जानते आया साजन संत करो यहू का मान त्याग जप हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव आप जप अब रह नाम जो पाव भगत पाय तरगा संसार बिन भगति तन उसी शहर सर्व कल्याण सुख निध नाम गुड़ जात पाए विश्राम सकल दुख का वतना सुनन क नाम जप गुणता सुभ जी प्रीत प्रेम रह चाओ मान तनांतर ही स्वाय नियत पेख दरस सुख हुए मन विक साध चरण तोये भगत जनक मन तन रंग बेला को पावे संगिक भक्ति जय करमया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहना जाय नानक रहया सर्व समाय प्रभु संदीन दयाल

आसन जब गुण करता प्रभु सोई तब जम की त्रा कहु के सोई जावा भगत या गोचर प्रभि का तब चित्र गुप्त पूछत रेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादी तब कहूँ छुट्टी कान बंधन।

जह सर्व कलया पह प्रवीण तह वेद देव कह कुचीन जवा पना पुआ बुर तार तव सगन अब सगन कह विचार जय अपन ऊच अपना अवनिरा तह कौन ठाकुर कौन कही अचीर विस्मर विस्मर विस्माद नानक अपनी गत जान हुआ पु जहाँ शाले शीत वेद समय ऊह सब माया उसकवाप आदि सतेह गुण का नाह प्रवेश जह कह एक भगवान तह कौन अचिन कह लाग चिंता जह अपना पुआ पति यार तह कौन कथा कौन सुन यार भव्य तूज तूज नानक आपस कवाप पाहु चह रच प्रपंच कार तेह गुण मह किन विस्तार पाप पुन तह पई कहावत को नरक कुसुरशावताल जाल माय जन जाल हों मैं मोह परम पार दूसू मान अपमान अनुप्रकार की उपख्यान अपन खिराव कर दी खैर संकोचा तो नानकी।

नाश करा परा करतूत आदन किया पे जाने अपने जी की आप साज तर सब साज ओत पोत अपन संग्रह ताकि आत्मित कहीं ना जाए दूसर होए तो सो जी पाए दुख का किया साहब प्रवान गुरु प्रसाद नानकी हो जान जो जाने तो सदा सुख होए आप मिलाई लय प्राप सो हो तनवंत कुलवंत पातवंत जीवन मुक्त जसरे दा भगवंत तन तन तन जन आया जो प्रसाद सब जगत त्राया।

संसरण आई, कर कृपा प्रभाव मिलाई। मेट गए बैर पै सबरी अमृत नाम, साध संग लैन सो प्रसन्न पै गुरदीव। पूर्ण होई सेव किसी वाल जंजाल, विकार ते रहते राम नाम संरसना कहती। कर प्रसाद

अमृत निरंकार असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुखवेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पक्षार असंख मूल विलाय तार कुदरत कवन कहम विचार वारया ना जावा एक बार जोत उद्भावै साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कूर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जूर असंख गलबड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सिर करह पा।

अर बरन जात अर पात नहिं जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभाव प्रकाश अमितोज कहि जय कोड इंद्र इंद्रा।

जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैले अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ नह जाए। सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तथा हे एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। दे भिव न जान ही जय वेद और कते रूप रंग न जात पात सो जान नहीं कहे जेवतात्मा न जात जागर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर।

अनुभूतं आपा अभंगत मित अपार गुण गन उदार मुन गन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म दृश्य धर्म सर्व प्रणाम।

सुर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वं पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, संपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जाप है, थपा थप है, कृता कृत है, अमृत अमृत है, अमृत अमृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, तरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृत अमृत है, अजबा कृत है, अमृत अमृत है, नर नायक है, खलकायक है, विसंपर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्व पायक है, भव पंजन है, अर्गंजन है, रिवतापन है, जब जापन है, अकलंकृत है, सर्वकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्मवास है, जस के जास है, पुजांग प्रयाद छंद, नमो सूर्य सूर्य नम

काले अनंगीय कामे एक अछरी छंद अजह अलय अपह अभय अपू अजुआ नास अकाह सु गंज पंजा लख अपाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगह अटाह अनाथ ब्रह्मथ अजोनिया मोहनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म अपरम अगंजे अलेखे पुजंग प्रयाद छंद नमस्तुल प्रणाम समस्तुल प्रणाशी गंजुल अनाम समस्तुल निवास चंद्र कामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग विभू

सुखी बसै मोरू परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज करदै करियै सब बैरन कौ आज संघरियै पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेव सिख हमारे तारिय है झुंझुनू सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दै मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रच।

पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव की हो वेदराज ब्रह्मा जू थी हो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझिहो हमारा। नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजाजन आप सुवारी शिवकन को।

दुख जाए पौड़ी शिव किती संतोखी जिन सचो सत्याया उन्हीं मंदे पैर न रखे नु कर सो कृत धर्म कमाया उन्हीं दुनिया तोड़े बंधनान पानी थोड़ा काया तू बख्शिशी अगला नित दे।